0: Shaisan Mahagaye Ramai Le Tore Bhayo Te Bhani Aapno Dukh Pukar Malai Tini Le Bhani Bhani Jabuani
1: Bacchi Khao Bhano Rajanta Nagayo Thullo Ladaahi Bhayo दुपयुक्ता हूँ राई उसुक्रा पिता मा कोई न दीमा पायो कोई ब्राह्मण कोई सरप परदा द्वादे का नाम के माथी भई कन सरा तहाँ गए खेली रहे कैसे
0: ना घर हो प्रहाल घर हो दाल की छोरी मऊ यही वर्ष महापति मरी गए मेरो विपद के कहूं चल की मथी विवाह करी दिए बूढ़ा कुरूपी पना यही वर्ष महा

0: हर पर्वत फिर तराई हरू सब नेपाली बेची तलाक पालो बहुना गए चर्चा पी
1: बाबू
0: गाई मोला मोली न गए हरम कुमारी छोरी मैं बना छोटे।

सत्मादियेन प्रेमेरामन्मा दही चोरे माखन चोरे चोरे चोरी साड़ी धर्मानंत पाप चोरे तारे भवदल पारी।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: Bahadur.
1: No digáis eso.
2: बाइक वाली ले पटन लागी को होगी क्या हो?
3: कल ले बने हो?
2: बन्ने पड़ता रहा। बिक्रम बन्ने बित्ती के लाज ले बुत्तु कहीं उनसे?
3: देखो सुन।
4: बादल तबे बनो पची हुरुके था।
3: होइनो ला।
4: था तबला बेटी पची रोमांटिक होना था लेते।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

नमस्कार रेडियो शैलो सामुदायिक एफएम बैलेन्स थोपलो 7 मेगाहर्ज बाट म बद्री प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 29 तारिक भाद्र 13 गते शनिबार परेवा तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरे

धर्म कुमार कैसर्या श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवस सुजन मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत।

आनन्दकन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम चित बोलिए श्री आनन्दकन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।